0: Radio NRN 99.1 समय को ख्याल राखौं। 6 बज्यो।
1: यो नेपाली रेडियो नेट्रो
2: खरो विषयमा दरो बहस नेपाली बहस
3: यस नेपाली बहस का साथमा प्रीति तयारी चाउचाउ
4: ग्लोबल आईएमई बैंक सबैका लागि बैंक
5: डिशोम फाइबर नेट
2: खरो विषयमा दरो बहस

वॉशर मा क्रॉम्प्टन ब्रांड का एयर कूलर सीलिंग फैन स्टैंड फैन मिक्सर र आयरन को खरीद मा एक्साइटिंग ऑफर पाउन होस हर एक 15 दिन मा क्रॉम्प्टन को मिक्सर र बम्पर लक ड्रामा माइडिया डबल डोर रेफ्रिजरेटर जितने मौका पनि नागरिकता मात्र भए पुग्छ सहज ईएमआई मार्फत खरीद गर्न सकिन्छ।

Willingo festivity offer. Our pound host 1 वर्ष को 200 Mbps international net TV साथ में dual band router, Nokia Beacon 1.1 mesh router और net TV set-top box. मात्र रूप 12 से प्रति महीना में. शर्तें लागू होने चाहिए. छिटो बनेगा ये Willingo.

सको अवसर में सेंसे का होम अप्लायंस को खरीद में आकर्षक उपहार तथा कैश बैक। फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में 6 केजी एरियल, सेमी ऑटोमेटिक में 1 केजी एरियल, एयर कंडीशनर में इंस्टॉलेशन साथ इंस्टेंट कैश बैक पनि र बम्पर में हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल। नागरिकता मात्र भए पुग्छ, सहज ईएमआई मार्फत खरीद गर्न सकिन्छ।

अब शर्मा क्रम्प्टन ब्रांड का एयर कूलर सीलिंग फैन स्टैंड फैन मिक्सर र आयरन को खरीद में एक्साइटिंग ऑफर पाने होस हर एक 15 दिन में क्रम्प्टन को मिक्सर र बम्पर लक ड्रामा माइडिया डबल डोर रेफ्रिजरेटर जितने मौका पनी नागरिकता मात्र भई पुग्छ सहज ईएमआई मार्फत खरीद करना सकिन्छ।

0: मौली एफएम 94.2 समुदाय को आवाज।
1: ए बहिनी, घर त चिटिक्कै बनाएछौ हैन? यति राम्रो फर्नीचर को सामान कहाँबाट ल्यायौ?
2: कहाँबाट ल्याउनु नि दाई, हाम्रै व्यासचार किसान हार्डवेयर को पछाडी पट्टी रहेको आरती काष्ठ उद्योगबाट ल्याएकी नि।
1: हजुर, हामी कहाँ स्टील को दराज, कुर्सी, टेबल, साथै काठ को सोफा, दराज, पलाङ, पर्दा, कार्पेट, विवाह को सामान होलसेल तथा खुद्रा मूल्य में बिक्री गरिन्छ। आरती काष्ठ उद्योग,
3: ब्यास 4 मेन रोड, दमौली तनहुँ।
1: प्रोप्राइटर विष्णु कुमार श्रेष्ठ। फोन 98 16 16 13 26, 98 4 63 056 05, 98 19 11 36 27, 65 65 025।